आप जी विसाखी का पुरब मना रहे हो, अलगीधर पातशाह जी ने खालसा पंथ की अज साधना की सी विसाखी वाले दिन, ते शब्द भी उन्होंने ही है अलगीधर पातशाह जी का। दोवें शब्द राग विच दास पढ़ेगा, दोवें शब्द कलगीधर पातशाह जी दे ने। पहला शब्द जो मैं पढ़ के सुना देवा, क्योंकि आप जी नूं कई बारी समझ नहीं आवेगी, कई तुका दी अस्थाई दी तुक है। दीनन को दाता है, गनीमन को गारक है, साधन को रक्षक है, कि गुणन को पहार है। अकाल उस्तत, ओ वाहिगुरु गरीबां दा मालक है, दीनन को दाता है, ते दुष्टां दा ओ नाश करता है, ते अपने सेवकां संतां दी ओ रक्षा करता है, ते ओ गुणां दा पहाड़ है। पहाड़ मतलब दीनन को दाता है, गनीमन को गारक है, साधन को रक्षक है, गुणन को पहाड़ है। तेज हूं को तर है, के राजसी को सर है, के शुद्धता को घर

दृप्ता की बाण है कि बुद्ध को उधार है, सुंदर स्वरूप है के भूपन के भूप है, के रूपों के रूप है के कुमत को प्रहार है। ये शब्द रीत जो राग दास शुरू कर रहा है, राग है भटियाल। भटियाल भी दो तीन तरह गाया जाता है, बिलावल ठाट नाल, मारव ठाट नाल, ते अस्थाई है यदि दस मात्रा छत्ता। उस तो बाद इसे ही बारह मात्रा विच करके दास ने गाना है। सब तो पहला दस मात्रा झपता, दीनन को दाता है, गनीमन को गारक है, साधन को रक्षक है के गुणन को पहार है। आप जी श्रवण करो। उस तो बाद जो अगला राग होएगा वो होएगा समेदा राग शुद्ध सारंग। मेरी अभय बिनती सुन लीजे, हे रव हे सस हे कर नानिद, मेरी अभय बिनती सुन लीजे। दूजा शब्द रीत राग जेड़ा शुद्ध सारंग विच तीन ताल विच होवेगा, पहला जपताल ते इकताले विच आप जी श्रवण करो।

भगत नामदेव जी इस शब्द दे विच जिस थीम नू असीं अज आरंभ करना है, जिस विचार दी लड़ी आरंभ करनी है, वो है नाम। भगत नामदेव जी अपने जीवन का जो निचोड़ है वो दस रहे हैं, ताकि सानू भगत जी के इन शब्दों के द्वारा कोई डायरेक्शन मिल सके, कोई समझ प्राप्त हो सके। कहते हैं, मैं अंधले की टेक, तेरा नाम खुंदकारा। मैं अन्ना हां, अंधा हां, पर तेरे नाम की स्टिक जो है, तेरे नाम की जो छड़ी है, वो मेरा आसरा है। पाप के तेरे नाम की मैनु सपोर्ट है, तेरा नाम मेरा सहारा है। पाप के तेरे नाम तो बिना, तेरे नाम की छड़ी हाथ च होने तो बिना मैं एक कदम भी चल नहीं सकता। जीवन दे विच अत्यंत खड्डे हन, टोए हन, उतराव चढ़ाव हन, उन्हां दे विच जद तक तेरे नाम की छड़ी मेरे हाथ विच है, ओ मेरा अंधले दा आसरा है। तेरा नाम खुंदकारा। फिर आखते हैं, मैं गरीब, मैं कुछ नहीं हूं, मैं मस्कीन, बिल्कुल जो खाली हो, जिसके पास कुछ ना हो। पर कहते हैं, ऐसा भी नहीं कि मैं बिल्कुल ही गरीब हां, क्योंकि तेरा नाम है आधारा, तेरा नाम मेरा आधार है। तेरे नाम तो बिना मैं अपने आप नू गरीब और मस्कीन समझांगा, पर जब तेरा नाम मेरे पास है फिर मैं गरीब नहीं रह जांदा, क्योंकि गुरु महाराज जी अपनी बाणी च आखदे हन,

नाम जपण तो बिना कोई पूजा नहीं हो सकती। सानू समझ लेना चाहिए और समझ के अपनी डायरेक्शन भी मोड़ लेनी चाहिए है। मेरा सुनना ही नहीं चाहिए, अमल भी करना चाहिए। अगर असी नाम जप रहे हैं तो समझ लो असी पूजा कर रहे हैं। अगर असी रोजाना नाम नहीं जपते तो कोई पूजा नहीं कर रहे। बाबा जी अगले पूजा कीचे नाम ते आइए बिन नावे पूज ना हो। महाराज जी आप जी का तीर्थां दे संबंध की ख्याल है? स्पिरिचुअल क्वेस्ट दे विच इनलाइटनमेंट अटेन करने वास्ते, दुखां दा छुटकारा पाउण दे वास्ते लोग तीर्थां ते जांदे हन, पिलग्रिमेजेस ते जांदे हन, जिन्हां नूं होली प्लेसेस आख्या जांदा है। इज देयर इज सच थिंग? महाराज जी आखदे हन साडे वास्ते नाम जपना ही तीर्थ ते जाना है, क्योंकि जो नाम जपेगा वो खुद ही तीर्थ बन जाएगा, खुद ही तीर्थ बन जाएगा। तो साडे वास्ते तीर्थ ते जाना भी नाम जपना ही। कहते हैं तीर्थ नाम जाओ, तीर्थ नाम है, तीर्थ भी नाम है।

गुरु महाराज ये दसो बहुत लोग वेद शास्त्र सिमरतियां ये लिटरेचर पढ़ते हैं क्योंकि असी भी वेद शास्त्र प्राण सिमरतियां आदि पढ़िए। महाराज जी आखते नहीं साडे वास्ते नाम जपना ही वेद पढ़ना, नाम जपना ही साडे वास्ते वेद और शास्त्र है। कहते हैं नाम हमारे वेद अर नाद, फिर ये गारंटी करते हैं कि नाम जपन के नाल साडे ऐस लोक दे भी परलोक दे भी सारे कार्य पूरे हो जाते हैं।

ट्राई टू रिमेंबर दिस लाइन, नाम हमारे गुरु की से, क्योंकि गुरु की सेवा दे वास्ते बहुत ही कॉन्शियसनेस लेवल जो है वो इवॉल्व होना चाहिए, नहीं तो इंसान थां थां थां थां ते सेवा करने की बजाय बेअदबी करी जाएगा, गुस्ताखी करी जाएगा और सेवा करने दे नाल हौमी वधाई जाएगा। पर नाम है जो उसकी आत्मक अवस्था नू उच्चिया उठाएगा, हंकार नू मिटेगा, अते उस दे विच ही सिर्फ गुरु की खुशी, और किसे गल च गुरु की खुशी नहीं। हुण तक आप जी ने यह सुने, भगत नामदेव जी आखते हैं नाम मैं अंधा हां, जीवन दे रस्ते उत्ते जे नाम की छड़ी मेरे हाथ विच नहीं है तो मैं चल नहीं सकता, किते पहुंच नहीं सकता। नाम कहने मेरे जीवन का आधार। गुरु बाबा नानक देव जी महाराज दे बाणी दे विचों जो मैं प्रमाण दिते हैं ओ ए कहंदे हन कि नाम ही नाम है साडे घर दे विच, नानक के घर भुल गयो केवल नाम, नानक के घर केवल नाम, कहंदे साडे घर च सिर्फ केवल नाम है और कुछ नहीं। नानक के घर केवल नाम, नानक दे घर दे विच सुप्रीम टेक्निक जो है, मेथड जो है, वे जो है वो सिर्फ नाम है और कुछ नहीं है। कलयुग नाम प्रधान पदार्थ, भगत जना उदरे, सारा संसार रोगी है, उसका एक ही दारू है, एक ही इलाज है, वो की है नाम। संसार दे विच बहुत इग्नोरेंस है, अंधेरा है, तो दीवा की है नाम। लोग अत्यंत लोग तीर्थां ते तुरे फिरदे हन, गुरु जी महाराज कहंदे हन तीर्थ भी नाम ही है, नाम जपना ही तीर्थ स्नान है, नाम जपना ही तीर्थ स्नान है। कहंदे नाम ही साडे वास्ते वेद शास्त्र है, नाम ही साडे वास्ते, नाम जपना ही रब की पूजा है, अते नाम जपना ही गुरु की सेवा है। सो ए है नाम की इंपॉर्टेंस। समा समाप्त है, आज सिर्फ उस विचार नू साढ़े आठ तक आते हैं। सो हुण तक असा यह सुनिया है कीर्तन का पहला हिस्सा कि गुरु बाबा जी के घर दे विच केवल नाम है, नाम ही दवाई है, नाम ही दीवा है, नाम ही तीर्थ है, नाम ही पूजा है, नाम जपना ही सेवा है। तो आओ प्यार नाल एक दफा उस पंक्ति नूं हुण गाइए। मैं अंधले की टेक तेरा नाम खुंदकारा, मैं अंधले की टेक छड़ी सोटी, कहंदे ओ वाहिगुरु तेरा नाम है उस तो बिना मैं चल नहीं सकता, अते जो वाहिगुरु दे उस नाम की छड़ी तो बिना चलने की कोशिश करते हैं वो गिटे गोडे जरूर तोड़ाणगे, वह गिरनगे, चोटा खाणगे। सो आओ वाहिगुरु जी दे नाम नूं अपना आसरा बनाइए, समझिए, गाइए, फिर कीर्तन का थोड़ा जा अगला हिस्सा मैं आपकी सेवा रखांगा।

जोड़ के फोकस करके रखो और उस सारी की सारी विचार में अपने अंदर टिका के रखो जो सुने। इतना कुछ सुनन तो बाद नानक के कर केवल नाम, नाम ही तीर्थ, नाम ही पूजा है, नाम ही रोगानु खत्म करने वाली दवाई है, नाम ही जो दुख मिजरी सफरिंग जहर हैं साड़ी जिंदगी उन्हों का इलाज है, नाम ही तीर्थ है, नाम ही गुरु की सेवा है। इस तो बाद जो ट्रूली एक सीकर है उसके मन दे विच ये जो एक अजीब मिस्टीरियस वंडरफुल मिरेकुलस इनवैल्यूएबल वस्तु है नाम, उसनु प्राप्त करने की इच्छा जागती कि किवें मैनू प्राप्त हो, जो कि तमाम चीजों का इलाज है, किवें मैनू प्राप्त हो। उस दे वास्ते इंसान के अंदर कितनी लौंगिंग चाहिए है, कितनी बर्निंग डिजायर चाहिए है, कितनी तीव्र इच्छा चाहिए है। जे इच्छा नहीं है, जो तड़प नहीं है, तो फिर वो वस्तु मिल नहीं सकती। गुरु महाराज जी का एक शब्द है, श्लोक है, जिस दे विच गुरु महाराज जी आखते हैं मेरी जो मैं सीख रहा नाम दा, अते मेरी सीकिंग दे विच जो इंटेंसिटी है उसनु देखो कितनी है। वो इतनी है कि जितनी देर तक वो नाम ना मिल जाए वो रज ही नहीं सकती, वो सेटल हो ही नहीं सकती, उसनु चैन आ ही नहीं सकता, वो टिक नहीं सकती। कहते हैं जिस तरह मिसाल उन्होंने तीन चार बहुत खूबसूरत दिखाई हैं, कहते हैं

बाबा जी दे चरना च रहा। दो चार दिहाड़े नानक सर ठाठ विखे बाबा जी दे चरना विच सेवा करदे रहे पति पत्नी ते नाल नाल हर वेले पंक्ति पढ़दे सन प्रभ के सिमरन रिद सिद्ध नौ निद ते परमेश्वर दी बख्शिश होई क्योंकि महापुरखां दी गवाही सी। साड़ी अरदास परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकती क्योंकि साड़ा परमेश्वर नाल कोई संबंध ही नहीं, पर नाम जपण वाले वो तो हर वेले चेते रखते हैं सतनाम श्री वाहिगुरु। उना दी अरदास अकाल पुरख कदे बिरथी नहीं जान देंदा। ताए नाम जपण वालियां दी शरण विच आए सन परमेश्वर ने बख्शिश कीती महापुरखां दी गवाही।

जमींदार इससे इतना प्रसन्न होया, इतना प्रसन्न होया कि एक दिन इसने आख्या कि तू मेरे पुत्रां वर्ग है, ये जो कुछ भी मेरा है ये सब तेरा ही है, ये सारे सुख तेरे ने। ते गुरु प्यारियो जदों सब कुछ इन्हां नूं मिल गया, भुख नंग दी पीड़ कटी गई, ते फिर बाबा जी दे चरणा च आए। बाबा जी ने आख्या भी हुण की चाहिए महाराज, दुनिया दे सारे सुख तां मिल गए, हुण नाम दा लाल साड़ी चोली च पा दी। हजूर ने आख्या फिर बई जिवें पहला पढ़दे सो प्रभ के सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध, ते हुण पढ़िया करो प्रभ के सिमरन ज्ञान ध्यान तत बुद्ध, ता आत्मिक दाता दी तुहाडी चोली विच आत्मिक दाता पै जावणगी। ता उस दिन तो इन्हां ने पढ़ना शुरू कीता प्रभ के सिमरन ज्ञान ध्यान तत बुद्ध। ता ऐसे सन बाबा जी, जेकर कोई दुनियावी शै भी मंगण आउंदा ता नाल ओनू ओ भी देंदे, पर नाल नाल बाणी दे नाल भी ओनू जोड़ देंदे, क्योंकि महापुरख दा ता कम है वाहिगुरु दे चरणा नाल जोड़ना। सुई सुहागा संत जन ए तीनों है जोड़न, सुई भी जोड़दी है सुहागा भी जोड़दा है, ते संत जन भी टुटे हुए बंदे नूं वाहिगुरु नाल जोड़ देंदे। इसलिए प्यार वाले कवि ने आख्या भी रब दा नाम जपावण दे ली दुनिया दे विच आए, ओ किसे आवागमन दे चक्कर विच नहीं आए, ए ता नाम जपण

सुखमनी दा नाम बाणी दा तुरा बनना। सेवका ने आख्या जी सत वचन, बाबा जी ने आख्या जिथे एक दो पाठ जा पंज सत पाठ सुखमनी साहब दे रोज कर दे हो ना, हुन लगातार सुखमनी दी बाणी चला देनी। लगातार नानक विसर विखे बाणी दा प्रवाह चला देना ताकि कल युग कदे भी इथे आ ना सके। सच है प्यारी साध संगत, बेशक श्री नानक सर साहिब विखे माया दा मथा नहीं टेकिया जांदा, पर गुरु नानक ही जाने कित्थों कित्थों नाम दे विहाजन ली अज तक संगतां आउंदियां ने।

पर रब दे प्यारे ता रब नू ही मंग लेंदे ने। ता इस तरह बाबा जी ने पूरने पाए कि किवें सिख ने गुरु ग्रंथ साहिब नाल प्रीत पाउनी, किवें हाजिर नाजर समझ के भोग लगाउणा। आप क्या करदे सन जदों भी प्रसाद छकीए ता आखिए गुरु नानक तेरा दिता खारे, जदों भी पहनीए ता आखिए गुरु नानक तेरा दिता खादा पहन रहे, तेरी बख्शी सदका सारियां खुशियां मान रहे। ता इस तरह बाबा जी ने कई पूरने पाए ते जो कोई भी आंदा उसनू यही कहंदे भाई एक दा हो जा। बहुते दरवाजियां दा पौना

प्रीत पावेगा, प्यार करेगा, तो गुरु तेरे सारे कार्य सवारेगा। अचिंत काज करे प्रभ तिनके, जिन हर का नाम प्यारा, जिन्हां नू नाम प्यारा लगदा है, वाहिगुरु आप उन्हां दे काज सवारदा। इस तरह हर किसे नू जिवें भी होना, बाबा जी ने उदी सुरती निरंकार दे चरणा नाल जोड़ देनी। इसे लई तां अज संगतां

पूर्ण प्यार ते सत्कार विच गज के आखो सतनाम। साधु कौन है जिन्हें मन नु साध्या है, महाराज मैनू उन्हां दा मेल करा। श्रोमणी कमेटी

0: कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर पाछे लागे हर फिरे कहत कबीर कबीर हरी पिछे पिछे फिरदा पे कबीर
1: एक कड़ी पौड़ी
0: गुरु जेड़ा है वो सिख नू प्यार कर लगता है।

धरती धर्म दी होती। जिथे मेरा सतगुरु आके सज गया, जिथे मेरे सतगुरु के दर्शन प्राप्त हो जान, वो धर्मशाल हो गई, धर्म की धरती हो गई, वो शरीर धर्म की धरती हो गया, वो जीवन धर्म की धरती हो गया। उथे धर्म पुंगरेगा, धर्म वधे फुलेगा, धर्म फलेगा जिथे सतगुरु आ गया। ते सतगुरु कदों आउंदा? जदों गुरु की जुगत आ जावे, समझो गुरु आ गया। भाई साहब भाई गुरदास के जीवन च गुरु आया, उन्होंने जो कुछ गुरु नूं माणे, जो कुछ गुरु नूं जाणे, ओह कुछ गुरु नूं बयाने। पहला तो भाई साहब कहिंदे ने कि सतगुरु एडा दयाल है कि जे गुरु वाले एक कदम भी पटीए ना, एक कदम भी नीयत धार के गुरु वाले पासे चलीए, चरण शरण गुर एक पैंडा जाहे चल, उठ के तुर सही। जे कोई तुरे ही ना, एक कदम भी चुकन नूं तैयार ना होवे, ते भला कोई पुछे कि गुरु नूं की कान पई, उस नूं की लोड़ पई है। हालांकि कई बार वेखने आ, पता नहीं गुरु नूं कुछ लोड़ होवेगी। जे गुरु नानक वल वेखदे आ, संसार दे पापियां अपराधियां दे घरां च पहुंच पहुंच के उन्हां नूं गुरमत दृढ़ कराउंदे फिरदे ने, कोई लोड़ होवेगी ना। पर गुरु नानक दी लोड़ की है? गुरु नानक दी लोड़ है संसार नूं जीना आ जा। उन्हूं आप कुछ नहीं चाहिए, उन्हूं केवल यह चाहिए कि बंदे नूं अकल आ जावे, इंसान नूं होश आ जावे, इंसान जाग जावे, ते ओह हलूण हलूण के झंझोड़ झंझोड़ के मानसिक तौर ते सुते बंदियां नूं जगाउंदे फिरदे। भाई साहब कहिंदे ने जिस किसी ने एक कदम भी चुकिया, एक कदम का मतलब है जिसने माड़ी जी नीयत भी बनाई, जिसके मन च माड़ा जिहा किसी वेले उमा उठे है, चंगे पासे तुरन वास्ते जिसने माड़ा जिहा भी मन बनाया, सतगुरु ने एकदम अगे होके उस नूं संभालिया ते तोर लिया। चरण शरण गुर एक पैंडा, पर एक कदम जिहड़ा है सिख दे हिस्से आया। पहला कदम तैनूं पुटना ही पएगा, उद्दम का एक कदम तेरे हिस्से, करोड़ां कदम मेरा सच्चा सतगुरु तैनू अगो आके स्वागत करके लै तुरेगा। चरण शरण गुर एक पैंडा जाहे चल, सतगुर कोट पैंडा आगे होए लेत है। एक होर भी गल कहिंदे, कहिंदे ने एक बार सतगुर मंत्र सिमरन मात्र, तू धन गुरु नानक ना कहे कोई गल नहीं, गुरु नानक नूं धन ना कहे तो इथों नहीं किया जाता। पर गुरु नानक ने जिहड़ा तैनू गुरमंत्र दिता है ना, गुरु नानक ने जिहड़ा एक ओंकार तैनू बख्शे है, गुरु नानक ने जिहड़ा तैनू सत करतार बख्शे है, गुरु नानक ने जिहड़ा तैनू सत नाम बख्शिया है, गुरु नानक ने जिहड़ा तैनू वाहिगुरु कहना बख्शिया है, तू एक बारी प्यार नाल कह के तां वेख गुरु तैनू किन्नी बारी याद करदा। भाई साहब कहिंदे ने एक बार सतगुर मंत्र, गुरु दा दित्ता होया मंत्र एक बारी प्यार नाल याद करके वेख, सिमरन तां ही बारंबार गुर हेत है। गुरु बार बार हजार बार सिख नूं याद करदा, कोई नहीं जे तू मेरा दित्ता मंत्र याद कीता है ते मैं तैनू हर समय याद रखांगा। इस्लाम वाले एक गल कहिंदे, वो कहिंदे जिसले बंदा दुजानू होके गोडियां परने होके हाथ फैला के एक बारी कह देवे ना या खुदा बंदा, ते कहिंदे ने खुदा अगों सत वारी कहिंदा या बंदा या बंदा या बंदा या बंदा, सत वारी कहिंदा। पर भाई साहब कहिंदे ने नहीं, क्योंकि नेचा भाई साहब दा गुरु ते बहुत ज्यादा, वो कहिंदे ने नहीं सत वारी तां बहुत थोड़ा है। सिमरन तां ही बारंबार गुर हेत है, प्यार नाल हेत नाल गुरु बार बार हजार बार अपने सिख नूं याद रखदा है, करदा रहिंदा है, याद रखदा है, हर समय याद रखदा। एक होर भी गल, पावनी भगत पाए कौटी अग्र भाग राखे, प्यार नाल सत्कार नाल अदब नाल भेटा दी भावना नाल एक कौटी टुटी कौटी भी लिया के गुरु चरणा ते सिख ने अर्पण कर दिती, ताहे गुर सर्व निधान दान देत है, गुरु ओदे खजाने भर दिंदा, सारे खजाने उस नूं बसदे। पर एक गल जरूर है, शर्त पावनी भगत पाए, जे कोई दाता ही बन के आवे कहिंदा मैं गुरुद्वारे देण चले आ, मैं गुरु नूं अर्पण करन दी बजाय कहिंदा मैं गुरु नूं देण चले आ, बहुत दाते बन जांदे। समझ नहीं ना, सुरत नहीं है। पैर पैर ते मंगता बंदा किसे वेले दाता बन के तुर पैंदा, ओह भी गुरु दे दर नूं, मैं गुरुद्वारे देण चले आ, नहीं देण दा कोई थां ही नहीं है, इत्थे तां अर्पण करन दा थां है। तेरा किया तुझे क्या अर्पो, जिसकी बस तिस आगे राखे, मालिक तेरी दात तेरे अगे, मैं देण वाला कौन हूं, मैं तां तेरी ही चीज तेरे अगे रख के अर्पण करने वाला तां हो सकना। इस तरह पावनी भगत पाए, और कई आउंदे ने ना चला के मार दे पैसा, चला के मार दे ने रकम, सुटदे ने, इन्नी भी जाच नहीं। गुरु दर दे उत्ते हाथ बन के, एक गुजरा लोड़वंद बैठा है तेरी माया का,
ਤੇਰੇ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਪਾਉਂਡਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਨਿਮ ਜਾ, ਚੁੱਕ ਜਾ, ਡੁੱਲ ਪਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਣ ਅਭਿਮਾਨ ਸਾਰਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਜਾ। ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੁੱਜਦਾ ਸਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰੱਖ ਦੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਰੱਖੇਗਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਾਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਦਾਤਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਦਾਤਾ ਤੇਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਸੁਗਾਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਹਾਂ ਭਾਵਨੀ ਭਗਤ ਭਾਏ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਨਾਲ ਤੂੰ, ਤੇ ਕੌਡੀ ਵੀ ਰੱਖ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਤਾਹੇ ਗੁਰ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਦਾਨ ਦੇਤ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਨਿਧ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਮਹਿਮਾ ਆਗਾਧ ਬੋਧ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਤਾਂ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਮੋ ਨਮੋ ਨਮੋ ਨਮੋ, ਨੇਤ ਨੇਤ ਨੇਤ ਹੈ। ਉਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਅਗੰਮ ਹੈ, ਨਿਰਵੈਰ ਨਿਰਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕੋਈ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਂਦਾ, ਤਿਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਲੈ ਕੇ ਚੜਿਆ ਸੋਧਨ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਸਰੂਪ ਹੋਵੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ

ऐसा पुल है। भाई साहब कहंदे ने एक वारी नहीं पांच वारी गंगा चला जाए, पांच पांच वारी प्रयागराज रा के त्रिवेणी दे इशनान करे, एक सिख नूं इशनान करा देवे, एक सिख नूं नहाउण वास्ते इशनान वास्ते पानी भर के देवे, उहदे इशनान दा प्रबंध कर देवे, इन्ना पुल है। कहंदे ने सिख नूं प्यार नाल पानी पियाता, वैसे तां सब नूं पियाउणा चाहिए, पर गुरु के सिख नूं गुरु शब्द दी विचार वाले नूं गुरु प्यार वाले नूं आदर सत्कार नाल पानी पिया दिता। समझ लो कुरुखेत्र दी यात्रा हो गई, कुरुखेत्र वर्गे महान तीर्थ दी यात्रा हो गई, ते जे किते सिख नूं प्रसादा छका दिता प्यार नाल भाव करके, लंगर छका दिता है ते असमेध जग कर लिया, थोड़ा नहीं बहुत वड्डा पुन हो गया। भाई साहब कहंदे ने एक होर वड्डा पुन भी है, एह तों वी वड्डा पुन है, जैसे सत मंदिर कंचन के उसार दी, कोई सोने का मकान एक अद्धा बना सकता है, मिट्टी का ही बनाने मसा मसा बनना, एक नहीं सत सत मकान सोने दे कोई बना के दान कर दे, जे कि सिख नूं शब्द सिखा दे, शब्द सुना दे, शब्द के लड़ ला दे, उदों वड्डा पुन। सत सत सोने दे मकान बना के दान करन नालों एक सिख नूं शब्द सिखा दे, गुरु के शब्द के लड़ ला दे। एक होर गल कहंदे ने साधां दे दर्शन करन वास्ते, महात्मावां दे दर्शन करन वास्ते, उन्हां आत्मा दे दर्शन करन वास्ते लोग तीर्थां ते भटकदे ने, पर भी वारी किसे साधु दे दर्शन करन जाना एक पासे ते किसे गुरसिख नूं मुठियां भर के सवा देना एक पासे। इस छोटे जतन नाल वड्डा फल, बहुत वड्डा महात्म है, गुरु के सिख दी खुशी गुरु की खुशी है। और एक वारी ऐसा होया सी, भाई सत्ता बलवंड कीर्तन करके हटे सन, उठे ते अगों बाबा बुढ़ा जी मिल गया, कहन लगे भाई सत्ता अज मैं पछड़ गया, एक शब्द मैनू भी सुना दे। कहन लगे बाबा इस तरह थोड़ा कीर्तन सुनाया जाता, उथे आके सुनिया कर। बाबा निराश होके जा बैठा, संगत गुरु के बचन सुन लै, साहब गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह दे बचन सुन लै। शाम होई कीर्तन करन आउण बैठे, महाराज दूजे पासे मुंह करके बैठ गए, परेशान होए, हाथ बन्ने, महाराज कहन लगे नहीं तुहाडा कीर्तन सुनना, तुसी मेरे सिख नूं शब्द नहीं सुनाया, मेरे की लगदे, मेरे सिख दी खुशी नहीं लई, मेरे की लगदे,

होता है। जैसे कपने कपड़े बुनने वाला जुलाहा एक एक तागे की तंत को जोड़ जोड़ कर कपना बनाता है, पर ऐसा भी हो जाता है जब ये तागों की तंदें उलझ जाती हैं तो कपड़ा बनना रुक जाता है। जो कपड़ा बनाने का कार्य है रुक जाएगा। जितनी देर तक इन उलझियों हुई तंदों को कोई सुलझाता नहीं, अपने आप तो जे उलझने मुकेंगी नहीं, सुलझाना ही पड़ेगा। इसको सुलझाने के लिए जिसको सुलझाना आता है वही सुलझा सकता है, पर जितनी देर ये सुलझेगी नहीं आगे का काम बंद हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं। ऐसे ही मालूम होता है हमारे जीवन में उलझने ही उलझने हैं। वो सभी उलझने हमारी अपनी ही डाली हुई है। मनुष्य का जो बर्ताव है, स्वभाव है, इसने हमेशा ही सदा ही उलझने डाली है। सुलझाना इसको आता नहीं, और आत्मिक जीवन जीने के लिए सुलझाना बहुत अति जरूरी है, अत्यंत जरूरी है। देखना कैसी उलझने हैं। फितर शब्द में बताया, श्री रूपी कुआं है, कूटा एक श्री रूपी कुआं है। जो कैसी उलझने हैं, कैसे सुलझेंगी, अपने आप तो सुलझेंगी नहीं। श्री रूपी एक कुआं है, उस कुएं में पांच चरखी लगी हुई है, पांच ज्ञान इंद्रों की, और ऐसी बुद्धि जो विवेक नहीं, जो बुरे और भले की विचार करने वाली नहीं, वो इस श्री रूपी कुएं से एक टूटी हुई रस्सी, टूटी हुई लाज के साथ बुरी वासनाओं का पानी भरती जा रही है। और देखना रस्सी तो टूटी पड़ी, लेकिन टूटती जा रही है, लेकिन श्री रूपी कुएं से ऐसी बुद्ध जो विवेक नहीं, वो मंदी वासनाओं का, विकारों का, बुरे कर्मों का पानी भर रही है, परती जा रही है। एक पितर शब्द में और बोला, ओहो जे दिससे खूहड़ी कौन लाज बहारी, लाज घड़ी सो टूट पड़ी उड़ चली पनेहारी। पनेहारी क्या करेगी, जब रस्सी टूट जाएगी, लाज टूट जाएगी, क्या मिलेगा आपको, आखिरकार तो पछताना ही पड़ेगा। ऐसे ही उलझने हैं हमारी जीवन में। देखना किसी की 20 साल की लाज टूट गई, किसी की 30 साल की, किसी की 40 साल की, किसी की 50 साल की, किसी की 60 साल की, कम हो गई। आंखों भाई इतना बूढ़ा हो गया, अभी भी
बुरी वासनाओं का पानी भरता है, अभी भी विकारों का पानी भरता है, अभी भी इसको शांति नहीं। देखना हम जीवन में कितना कुछ खा गए होंगे, कितना पानी पिया होगा, कितना भोजन लिया होगा, कितने मेवे खाए होंगे, इसका कोई लेखा जोखा है? सब कुछ खाकर भी हम भूखे के भूखे हैं। आखो भाई, इतना बूढ़ा हो गया, 60 साल की रस्सी टूट गई, आंखों में तो दिखाई नहीं देता। थाके नैन सरवन थाके, थाकी सुंदर काया, जरा हाक दी सब मत थाकी, एक ना थाक समाया। अखा आंखें जवाब देगी, देखता कम है, कानों में सुनाई नहीं देता। आज जो जीभ है बोलती नहीं, तत्लाती है। आखो भाई, अरे मत को क्या हो गया, बूढ़े की मत को सब बोलते हैं, ये तो बूढ़ा हो गया, इसकी तो जो बुद्धि है ना, इसकी मत भी 72 की हो गई। ये बूढ़े को तो हम सोच भी सोचनी ठीक नहीं आती। सब कुछ इसका कम हो गया, बल कम हो गया, इसके जो ज्ञान इंद्रे वो साथ नहीं देते, कर्म इंद्रे भी साथ नहीं देते, लेकिन अभी भी माया का मोह नहीं टूटा। आखो वाहिगुरु, अभी भी माया के मोह की जाल के गिरफ्त में अपने आप को बांधा हुआ है। एक ना थाक समाया, एक पितृ शब्द में और बोलते हैं। एक कुआं में एक गिर गया, बहुत अंधेरा था, उसको अचानक अचन चेत एक लज एक रस्सी हाथ में आ गई। उसने सोचा काम बन गया, अब तो बाहर निकल आएंगे। क्या देखा, जब ऊपर चढ़ने लगा, उस बंधी हुई रस्सी को पकड़कर वहां एक तुपका तुपका तुपका शहद का डिगरा था, माखियों का डिगरा था, वो उसकी जबान में आ गिरा, उसको मीठा लगा। उसने सोचा कोई बात नहीं, बाहर तो फिर आ जाएंगे, पहले हम मीठा खा लें। वो मीठा खाने में मस्त हो गया। इतने में क्या हुआ, जहां पर वो रस्सी बनी हुई थी वहां एक चिट्टा चूहा एक काला उस रस्सी को काट दिया। आखो भाई, ओ खूह में डिग पड़ा। ऐसे सतगुरु बोलते हैं, अन दिन मूसा लाज चुकाई, गिरत कूप में खाए मिठाई। देखना संसार रूपी कुएं में हम गिर पड़े हैं, श्वासों की रस्सी हमें मिली, इस मनुष्य जामे को सफल बनाने के लिए हम तो अपनी जीभ के चस्कों पदार्थों के लोभ के इतने मस्त हो गए, हम की श्वासों रूपी लस्सी तो टूट गई पर हासिल कुछ नहीं किया। ऐसे एक दृष्टांत एक महात्मा देते थे हमें, जब हम छोटे थे, कहते एक सांप के मुख में एक मेंढक आ गया, उस मेंढक ने अपना मुख खोल लिया, दूसरे मेंढक ने पूछा ये क्या करें, आप तो मरने लगे हैं, तो आपने मुंह क्यों खोला, कहते क्या पता मरते मरते कोई मच्छर मुंह में आ जाए। आखो भाई, ऐसा हमें बताया गया, बूढ़ा तो हो गया, देखना किसे समय भी अंत काल आ सकता है। आखो वाहिगुरु, पर हम ऐसी उलझन में बंधे हुए हैं कि हमें आयु तो कम हो रही है लेकिन वो बुरे विकार कम नहीं हुए।
वो ऐसे ही है। देख लेना किसी को ये बताओ, कभी कह कर देख लेना, अरे भाई नाम जप ले, आखो भाई करो, बहुत कुछ खा लिया पी लिया, अब तो नाम जप ले, किसको पूछ ले। हम भी कहते हैं आप भी पूछ कर देख ले। हम पूछते हैं एक ही हमें उसका जवाब मिलता है, क्या करें अभी नहीं, अभी तो हमने बहुत काम करने हैं, अपने कुटुंब को पालना है, उसको काम लगाना है, अभी तो हमारे सिर पर हमारे कंधों पर बहुत जिम्मेदारियां हैं, हमारे कंधों पर। हम सब काम कर लें फिर हम नाम जपेंगे, पहले तो काम तो मुका लें, काम मुका लेंगे अपनी जिम्मेवारियों को पूरा कर लेंगे, जिम्मेदारियों को तो फिर कर लेंगे, नाम जप लेंगे। लेकिन उससे ये पूछना चाहिए, क्या किसी ने गारंटी ली हुई है कि हम बूढ़े होकर मरेंगे। किसे ने ऐसी गारंटी ली है कि हम सब जिम्मेवारियों को पूरा कर कर मरेंगे। हमने तो देखा है केते गर्भ गले, हमने देखा कितने बालिक कितने जवान जोबन भर में चले गए संसार से। पितृवाणी में क्या है, नए बारिक नए जोबन नए बिरदी कछ बंद, ओ वेला नह बूझी है जो आए पर जम फंद। कितने आए कितने चले गए, ये भी बताया गया, जैसे किसान बोवे किसानी, काची पाकी बाढ़ परानी, जो जन्म है सो जानो मुआ, गोविंद भगत अस्त्र है थिया। देखना जब किसान बोता है ना, उसको ये यकीन है, भरोसा होता है कि जो मैं बोआ है उसको काटना जरूर है। हर किसान जो भी हो, जो धरती में बोता है, ऐसा भरोसा करता है एक दिन उसको काटना है। जो जन्म में सो जन्म हुआ, ऐसे ही जिसने जन्म ले लिया, यकीन करना उसने एक दिन मरना भी जरूर है। जिसने भी जन्म ले लिया वो मरेगा। जब हमने देखा एक खेत में, एक खेत का रखवाला किसान ने वहां पर बिठा दिया राखी करने के लिए। जब राखी करने के लिए वो गया, उसके जाने से पहले उस खेत में ऐसी फसलें थी जिनको ऐसे फल लगे हुए थे जो पक रहे थे, और उसके जाने से पहले ऐसा भी देखा उसने, ऐसी फसलें भी थी जिनको फूल आए हुए थे, फूलों ने फल बनना था। उसने देखा ऐसी फसलें भी थी जो धरती में पुंगर रही थी, उसके सामने भी बोई गई। देखो रखवाला तो खेत की राखी करता है, किसी को भी खेत में अंदर नहीं जाने देता। कच्ची फसल तो क्या, वो पक्की भी काटने नहीं देता, लेकिन खेत का मालिक आ जाता है। खेत का मालिक आकर उस खेत में जाता है, राखी करने वाला उसको सलाम भी बुलाता है। राखी करने वाले के सामने सामने क्या हो रहा है वो देखता है, ये मालिक के क्या हो गया, इस किसान को क्या होगा। ये पक्की फसल की बजाय कच्ची क्यों काट रहा है, अखुवाई करो।
لیکن راکھی کرنے والا مجبور ہے. وہ تو یہ بولتا ہے یہ مالک ہے, اس کے آگے ہم کیا کر سکتے ہیں, اس کو کیسے سمجھا سکتے ہیں, ایسے نہ کرو ایسے کرو. ایسے ہی

देखो हम आए, सब परिवार देखा, किसे की क्या मजाल है, हमारे किसे छोकरे को, किसे बुजुर्ग को कोई बोल सके, हम झगड़ा करते हैं। लेकिन जब मालिक प्रभु आप आ जाता है, वो क्या करता है, कभी 5 साल का बूटा ले जाता है, कभी 10 साल का ले जाता है, कभी 50 साल का ले जाता है, कभी 60 साल का ले जाता है। हम क्या करें, हम तो यही बोलते हैं, जिस ठाकर सियो ना ही चारा ताको की जय सत नमस्कार। हम तो यही बोलते हैं, नानक बोलन चखना दुख छड मंगी है सुख, सुख दुख दोए दर कपड़े पहरे जाए मनुख, जिथे बोलन हारी है तिथे चंगी चुप। जिथे बहस नहीं कर सकते, आगे कुछ नहीं कह सकते, वहां पर तो चुप ही करनी पड़ती है। ऐसे भी हो जाता है खेत वहां पर ही रह जाए, रखवाले कोई ले जाए। ऐसे भी हो जाता है परिवार यहां ही, हम अपने आप को उस परिवार का मुखी मानते थे, वो मुखी कोई ले जाता है। इसलिए समझाते हैं, आप तो कहते अभी तो नहीं, हम जिम्मेदारियों को पूरा कर कर मरेंगे, फिर नाम जप लेंगे। अरे भाई कैसे जपेगा, जब नैनो नीर पहे तनखीना पे केस तुदवानी, रूदा कंठ शब्द नहीं उचरे अब क्या करे परानी, जब आपका गला खाऊं खाऊं करेगा फिर जप लेगा। आंखों में पानी निरंतर बढ़ेगा बहेगा फिर जप लेगा, नहीं जप सकेगा। कहते अरे भाई मैं आपको बात बताता हूं, आपने तो क्या करना है, क्या निभाना है, आपके जो शरीर के अंग है ना, उन अंगों ने ही आपको वेला कर देना है। भाई गुरदास भी बोले, अन्ना लूला पिंगला तन थक्का मन दै दिसता है, आंखें होते हुए अंधा हो गया, पैर होते हुए लंगड़ा हो गया। मैंने तो देखा, आपने देखा है, जब बालक था तब भी सहारे की जरूरत होती थी, बूढ़ा हो गया अब भी। बालक अवस्था में दांत नहीं थे, बूढ़ा हुआ तब भी। बालक अवस्था में भी कांपता था, बूढ़ा हुआ तब भी। बालक अवस्था में तत्लाती जबान से मांगता था, बूढ़ा हुआ तब भी। अरे सोचो भाई, जब नाम जपने का समय है क्यों नहीं जपते। आखो भाई, ऐसी उलझन में बंधा हुआ आज कह रहे हैं, कायरे मन बिखिया बन जाए, विषय विकारों के जंगल में क्यों जा रहा है। आखो भाई, अरे नाम क्यों नहीं लेता परमात्मा का, जिसने आपकी हर समय सहायता की है, सहाय हुआ है, आगे भी होगा। भूलो रे ठग मूरी खाए, एक बात मैं आपको बताता हूं, ऐसे लगता है इस मनुष्य ने परमपिता परमात्मा को गवाया नहीं, भुलाया है। आखो वाहिगुरु, मैं फिर बोल दूं, इस मनुष्य ने प्रभु को गवाया नहीं, भुलाया है। देखना जो हमने गवा दिया होता ना, एक बुरकी भी हम मुख में नहीं डाल सकते। उसको गवाकर तो हम एक कदम भी नहीं चल सकते, उसको गवाकर तो हम बोल भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते,

उसको गवाह कर को तो जी भी नहीं सकते। ये सच्चाई बात है, हमें उसको गवाया नहीं बुलाया है। आखो वाहिगुरु। जब हम ये बोलते हैं बुलाया है, तो पितृ वाणी में ऐसा संकेत दिया है, ए पूला नहीं बुलाया गया है। आखो वाहिगुरु। भूलो रे, भगत जी ने कमाल कर दी। विस्माती विचार प्रगट कर दिए। आखो वाहिगुरु। भूलो रे, देखना ये भूला नहीं, इसको भुलाया गया है। मानमुख भूले भुलाई है, भूली थोर न कर। सवाल करने वाले ये करते हैं, आप कहते हैं भुलाया गया, तो किसने भुलाया है? आखो भाई, आपने ये बोला कि भूला नहीं भुलाया गया है, तो किसने भुलाया? ता साहिब कहते हैं बाबा माया भरम भुलाए। आखो भाई, इसको माया ने भुला दिया, माया ने पुलावड़ों से पुला दिया। भुलावड़े भुली पुल पुल पच्छो ताणी, फिर छोड़ अड़ी सुती फिर की सार ना जानी। ए माया के पुलावड़ों में भूल गया। फिर सवाल करते हैं, ये तो 84 लाख जूनों का सरदार था, इसको तो सब बोलते थे बहुत सुंदर, बहुत चतर, बहुत सियाना, ये भूला क्यों? क्यों भुलावड़े में आया? आखो भाई, ये भुलावड़े में क्यों भूला और कैसे भूला? जब हमें ये बोला भूलो रे ठग मूरी खाए, आखो भाई, इसको माया ने कैसे भुला दिया? कहते हुआ क्या, इस माया ने इसको ठग मूरी ठग बूटी सुंगा दी। आखो भाई, जय ऐसे समझ लें कि इस माया ने इसको ठग बूटी खिला दी। ठग ओरी भूलो रे ठग मूरी खाए, ए पलावड़ों में आकर भूल गया, इसने माया की ठग मूरी खा ली, ठग बूटी खा ली। कहते फिर क्या हुआ? कहते रतन पदार्थ खोया ठगया मुठा जाए। कहते हुआ क्या, जब इसने ठग बूटी खाई तो इसका रतन पदार्थ ज्ञान का पदार्थ जो इसको सूझ थी वो जाती रही। ये तो ये भूल ही गया कि मैं इंसान भी हूं कि नहीं। ये भूल ही गया कि मैं मनुष्य भी हूं कि नहीं। देखना, मन करके मनुष्य है, तन कर नहीं। मनुष्य होता ही मन कर। जे अगर मन वाला मनुख होकर मनुष्य होकर मन को नहीं पहचानता, सिर्फ तन को पहचानता है, तो इसकी वृत्ति पशु वृत्ति है। जे मन वाला मनुष्य होकर आत्मा को जानता है तो महात्मा है। जब हम मन वाले मनुष्य होकर सिर्फ तन को देखेंगे, मन हमारा जरूर मैला होगा। जब मन वाला मनुष्य मन को आत्मा की ओर ले जाता है तो मन निर्मल हो जाएगा। हमारा मन मैला क्यों है? कि हम तन की तरफ झुकाव रखते हैं, शरीरों की तरफ झुकाव रखते हैं, शरीरों को देखते हैं, शरीर में रहने वाले को नहीं। आंखों भाई, हम शरीरों को तो पहचानते हैं, जो शरीर में आप नारायण रहता है उसको पहचानते ही नहीं। आखो भाई, जो इस मंदिर में भगवान रहता है उसको तो पहचानते नहीं। तो फिर मन मैला होता है। उसके पहचाने तो
बिना मैला होगा, जरूर होगा, होता रहेगा। आखो वाहेगुरु, आखो वाहेगुरु, वाहेगुरु। अब कहते हैं कि ये बहुत सियाना था, 84 लाख जूनों का सरदार, फिर इसने ये ठग मूरी क्यों खाई? तो आज के शब्द में कहते ऐसे हुआ, जैसे मीन पानी में रह काल जाल की सुध न लह, जैसे मछली पानी में रहती है, पानी में रहकर भी ये नहीं जान सकी कि पानी हमारा जीवन है, ये भी नहीं जान सकी ये जो जाल डाला गया है ये हमारी मौत है। मैं नहीं कहता, सतगुरु कहते हैं, मछली जाल ना जाने सर खारा असगाह, अत सियाणी सुंदरी क्यों कीतो विसाह, कीते कारण पाकड़ी काल न टले सिरा। हुण अपने कीते कारण पकड़ी गई है, बड़ी सुंदर सी, सियाणी सी, सतगुरु कहंदे इसने भरोसा क्यों कीता? अगली पंक्ति विच बोले भगत जी, जेबा स्वादी लीलत लोह, अपने जीव दे स्वादा करके मारी गई। ए मछली अपने जीव दे स्वादा करके मारी गई, ऐसी जीव दे स्वादा करके मारी गई कि लोहे दी कुंडी नूं ही निकल गई ते शिकारी दे जाल विच फस गई। जेबा स्वादी लीलत लोह, लोहे दी कुंडी नूं निकल गई। ते साहिब बोले, भाई रे इउं सिर जाणो काल, ज्यों मच्छी त्यों मानसा पवै अचिंता जाल। आखो वाहिगुरु, जिवें मच्छी ते जाल पै जांदा है। आखो वाहिगुरु, अचिंता ही। इसी तरह समझाते हैं हमें, ऐसे करो, आखो वाहिगुरु, ऐसे करो भाई। ये मनुष्य भी नहीं जान सका कि परमात्मा की बंदगी हमारा जीवन है, माया का जाल हमारी मौत है। ये जान लेता तो परमात्मा की बंदगी में लीन हो जाता और जीव के चस्कों और पदार्थों के पोगों के लालच में ना आता। ऐसे बोले हैं भगत नामदेव जी, जैसे ए मछली जीव के स्वादों के कारण पाकरी गई, शिकारी के जाल में आ गई, तैसे ही ए मनुष्य पदार्थों के पोगों और जीव के चस्कों लाभ और लोभ की गिरफ्त में बंधा हुआ, ऐसे कनक कामनी बांधियो मोह, सुंदर स्त्री और पदार्थ सोना आदि इस दे मोह पा माया दे मोह दे रूप रंगा विच इतना मस्त हो जाता है कि इस नूं अपना आप भुल जाता है ते माया दे जाल विच। आखो आए अपने आप को भुलाकर माया के बंधन में आ जाता है। और फिर आगे समझाते हैं, कहते देखना, जिमें मद मक्खी शहद की मक्खी, आखो वाहे शहद तो इकट्ठा करती है, दूसरे को डंग मारकर दूसरे को जहरीला डंग मारती है। और इसे मालूम नहीं, इस मक्खी को मालूम नहीं आखिरकार क्या मिलेगा, आपके मुख में स्वा तुआ लेने वाला और कोई ले जाएगा। ऐसे ही समझाते हैं, जैसे गौ अपने बछेरे के लिए दूध संचन करती है,
पर अहीर आता है, गला बांध कर ले जाता है। फिर समझाते हैं, आप तो माया के कारण बहुत संचन करने के लिए बहुत कालना कालते हैं, बहुत कमाई करते हैं, लेकिन आपने समझा नहीं, एक दिन ऐसा होगा धन तो धरती में ही दबा रह जाएगा और आपका तन ही मिट्टी बन जाएगा। आंखों भाई कहते, एक धनी था, उसने बहुत धन संचन किया। ऐसे धनी ने संचन कर एक पीपे में उस धन को संचन कर धरती में गाड़ दिया और ऊपर बिस्तर लगाकर सो जाता, किसी को देखने ना देता, अपने कुटुंब के किसी भी रिश्ते वाले को देखने नहीं देता, बहुत उसकी राखी करता। सारा जिंदगी ही, सारा जीवन ही उस माया को संचन करने में गुजार दिया। कहते एक दिन ऐसा हुआ, जमदूत उसको लेने आ गए। वो बोला, ऐसे करो भाई, मुझे छोड़ दो, इस तन का 1/4 हिस्सा ले लो। जमदूतों ने पीटा, ये धन आगे नहीं जा सकता। कहते आधा ले लो। फिर पीटा, कहते पूरा ले लो, मुझे छोड़ जाओ। फिर पीटा, कहते भाई ये अगर मुझे नहीं छोड़ते, एक बार मुझे देखने तो दो, जा रहा है और बोलता है, अरे माया आप तो बहुत पत्थर दिल निकली, आपने क्या किया, मैंने तो सारी जिंदगी सारा जीवन आपकी राखी की, लेकिन आप दो कदम भी मेरे साथ नहीं चलती, कैसी आप पत्थर दिल निकली। माया बोली, अरे मैं क्या करूं, आपने मेरे साथ क्या किया, भगवान ने मुझे बनाया था भूखों को भोजन खिलाने के लिए, भगवान ने मुझे बनाया था दुखियों की सेवा करने के लिए, भगवान ने मुझे बनाया था लोड़वंदों की लोड़ पूरे करने के लिए, बेसहारों का सहारा बनने के लिए, पर आपने मुझे धरती में गाड़ दिया। मैं तो प्रभु से ये निवेदन करूंगी, आपको भी परमात्मा धरती में गाड़ दे। धन धरती तन होए गयो तूड़, काम क्रोध तिष्णा अति जरै, साध संगत कब हूं नहीं करै, कहत नाम देव तांची आन, निरपो निरपै होए भजिए भगवान। भक्त नामदेव जी हमें समझाते हुए ऐसे बोलते हैं, अरे भाई जे जीवन जीते हुए भगवान का सहारा ले लें, भगवान का आसरा ले लें, भगवान के नाम धन की कमाई करें, शरीर तो आगे नहीं जाएगा लेकिन परमात्मा का नाम तन आगे जरूर जाएगा, नाम तन आगे जरूर जाएगा, नाम तन आगे जरूर जाएगा, नाम तन आगे जरूर जाएगा। कहते पर ये बात नाम तन कमाने की और आत्मक जीवन की जुगत की तब ही पूरी होती है जब हमें अब मोहे मिलियो है जियावन हारा, जब पूरा सतगुरु मिल जाता है। पूरा सतगुरु मिल जाए, जीवन की जुगत आ जाती है, हम कैसे जिए। और एक पितृ शब्द में सतगुरु कैसे कहते हैं, आओ पहले वो शब्द पढ़ लें।